0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसाला।

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथमा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजे सम्म र साँझ 8 बजेदेखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योतिमा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड।

माता सबूरी ने मतंग मुनि के आश्रम में सालों साल प्रतीक्षा की। लोग उसे पागल तक कहने लगे, किंतु सबरी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। मतंग मुनि ने समाधि लेने से पहले माता सबरी को बता दिया था कि प्रभु श्री राम

अपने गुरुवर के कहे अनुसार निस्दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। रोज बागों में चुन चुन कर बेर लाती और उन्हें मीठे बेर चक चक कर इकट्ठा करने लगी कि जब श्री राम आएंगे तो ये बेर उन्हें खिलाएगी और राहों को फूलों से बिछाने लगी।

सबरी की कुटिया तक आ गए। माता सबरी को श्री राम को पहचानने में तनिक भी देर न लगी और वो श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगी।

माता सबरी ने प्रभु राम को आसन पर बिठाया और जो मीठे बेर उसने चख चख कर अपने प्रभु के लिए इकट्ठे करके रखे थे वो प्रभु राम को खाने के लिए देने लगी और प्रभु राम भी सबरी की भक्ति के वश में होकर बड़े प्रेम से उन जूठे बेरों को

एक बार माँ सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में बैठी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही थी। तभी उनके दोनों पुत्र लव और कुश वहाँ आ पहुँचे। माँ, ये आप किसका ध्यान कर रही हैं? सीता जी बोली, मैं तुम्हारे पिता अपने स्वामी श्री राम का ध्यान करती हूँ। माँ, हमने अपने पिता श्री राम को कभी देखा नहीं, हम उनसे मिलने जाएंगे, दर्शन करेंगे। सीता जी बोली, वो तो बहुत दूर अवध में रहते हैं। माँ, हम तो जरूर जाएंगे। बच्चों ने जब हट की तो सीता माँ ने उन्हें आज्ञा दी और लव कुश श्री राम की खोज में निकल पड़े। और क्या गाते हैं,

मिलता उसी से पूछते, क्या आपने हमारे पिता श्री राम को देखा है? वो कहाँ रहते हैं? किसी ने कहा, वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। आप आगे चलकर किसी से भी पूछ लेना। फिर दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और कहते हैं,

चलते दोनों बालक थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां से निकला, दो मासूम बच्चों को देखकर बोला, बच्चों तुम दोनों कहां जाना चाहते हो? लवकुश बोले, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से मिलने जा रहे हैं। क्या आपको पता है राम कहां मिलेंगे?

हम अपनी माता सीता को वचन देकर आए हैं, या तो अपने पिता श्री राम से मिलकर जाएंगे या मर ही जाएंगे। यदि राम से मिले बिना वापस गए तो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे।

भजन गाते गाते श्री राम के द्वार पर पहुँचे, तब दरबारी बोले, हे तपस्वी बालको, किससे मिलने आए हो और क्या तुम्हारा परिचय है, हमें बताओ।

0: पहिले यहाँ सुंदर उन्नता एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति

0: पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
2: वो अनि मलाई

पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, पहले लोग मर रहे थे, पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, अब कहीं ये मर न जाए अपनी खाओ खाओ से। अरे मीठी बात कर

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरी।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: अरे आइए मेहरबान कदरदान दोस्तान भाईजान श्रीमान पहलवान। अरे हमने ये माना ये महंगा जमाना है, तन को तो ढकना है लाज तो बचाना है।
1: अरे दादा हो दादी हो नाना हो नानी हो वो घर का मालिक हो या घर की रानी हो।
0: सबसे दरियाफ्त किया सबसे तो पास की, आदमी से ज्यादा है इज्जत लिबास की।
1: अजी पूछो ये सेठों से पूछो ये लीडर से, कितने ऐप छुपते हैं रेशम से खद्दर से।
0: भाई कह गए पंडित ज्ञानी ध्यानी के कपड़े सफेद हों। हाँ भाई हाँ, ओ कपड़े सफेद हों मन चाहे काला हो, अंदर अंधेरा पर बाहर उजाला हो।
1: इसलिए अजी इसलिए तो कहते हैं।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
5: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
8: Four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: गोल्ड पैलेस, सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: સાવેર છુચ્છે પાકી
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 98026788।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: एफएम एजे 104.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन दिँदै हुनुहुन्छ केही सदाबहार हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचित यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग।
3: अध्यात्म ज्योति 104.8।

इस भजन में ये वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं, जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

0: सबैको मंगलम। अब घर घरमा मंगलम, सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम।
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल, मंगलम सोनम चामल, मंगलम सोना स्टीम चामल, स्वाद र संतुष्टि को लागि।

0: नेपाल टेलिकम को फाइबर इंटरनेट नया जडान गर्न तथा मर्मत गर्न घरमै बसी बसी 198 डायल गरे पुग्छ।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। जनक कह रहे हैं शरीर और संसार को इसी वक्त छोड़कर, ऐसा नहीं तो बेटे का शादी हो जाए, बहू आ जाए, उनके बच्चे हो जाए, फिर मैं संसार छोड़ूंगा। छोड़ेगी कब? अरे हमारा अभी तो बहुत काम है करने का, ये सब पूरा करके मैं बाद में छोड़ूंगा। एक सज्जन ने मेरे से कहा, एक उद्योगपति ने, गुरु जी मुझे 3 साल दे दीजिए, बहुत बड़े उद्योगपति इस देश के, मैं 3 साल कुछ ज्यादा कमाना चाहता हूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद मैं ये सब छोड़ के मैं आपकी सेवा में आऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम क्यों आए ना मेरे पास, तुम अपने काम करो, तुम अपना उद्योग

मन में तुम हिसाब किताब लगाते रहोगे, अशांति से भर जाओगे, तो फिर काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अभी नहीं, अभी इसी वक्त छोड़ो, छोड़ो मैंने छोड़ के भाग जाना नहीं, जनक खुद बोल रहे मैंने अभी परित्याग कर दिया। इसने राजगद्दी किसी को सौंपा नहीं, अभी अपना जिम्मेदारी से भागे नहीं, आखिरी तक जनक राजा बने रहे। मगर बोल रहे मैंने इसी वक्त छोड़ा और किसी कुशलता से मैंने परमात्मा को देखा। दृष्टि में वो कुशलता चाहिए, कौशला देव परमात्मा विलोकते, किसी तरह की कुशलता लगानी पड़े, कुशलता के साथ। अब जरा आंख को ऐसे दबा के देखो, सब टेढ़े टेढ़े दिखेंगे, सब है ना, दो दो दिखेंगे, देखो चश्मा लगनी हो लगी नहीं हो तो देखते हैं कि दो दो दिया देखेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन किसी के प्रेम में पड़ गया, मगर उसका ये शिकायत थी कि दो दो दिखता है सब। तो अब उसकी अपनी प्रेय से दो दो दिखी, तो दो आंख दो नाक सब दो दो दिखने लगा उसका। सब लोगों ने पूछा मुल्ला तुम चश्मा क्यों नहीं लगाता, अरे बहुत मजा आ रहा है, दो दो दिख रही है आप, एक नहीं दो। जैसे शादी हुई उसकी, तो डॉक्टर के पास भागा, डॉक्टर जल्दी से चश्मा पहनाया, भाई क्या बात है, तुमने तो मना कर रहा था, अब डर लगता है, दो दिख रही है, एक ही काफी लगता है आप तो। जैसे हम देखते हैं, जिस कुशलता से हम देखते हैं, वैसे वैसे हमें सत्य का होता है। परमात्मा सत्य है, मौजूद है, हमेशा है, उसको देखना तो कुशलता चाहिए।

है, एक लहर है, इसको पहचाने। देखिए सूर, जितना सूर होते हैं तो अनेकता होती है। जैसे हम सूक्ष्म में जाने लगते हैं, एकता महसूस होने लगती है, उस एक तत्व। और सूक्ष्म जो है जो परमात्मा की शक्ति है, उसको पहचानो तो हमें कुछ कुशलता चाहिए। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, तीन नियम जरूर पालन करना पड़ता है। क्या? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा 10-15-20 मिनट आधा घंटे जितने भी मैं ध्यान में बैठने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे कुछ कभी नहीं चाहिए। भूख लगे तो भोजन चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, गर्मी लगे तो हवा चाहिए, थकान हो तो नींद करनी जरूरत पड़ती है, नींद लेना जरूरत पड़ती है। मगर जब तक हम ध्यान में बैठते हैं, तब हमको ये धारणा लेनी पड़ती है कि इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। अप्रयत्न

लगेगा। इसी तरह से जब संसार दिखना बंद हो जाता है तो उस पर परमात्मा दिखने लगेगा। एक तरह की चित्र आता है, देखिए एक तरफ से देखो तो एक दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो देखो तो दूसरा दिखता है, एक तरफ से देखो तो लक्ष्मी दिखती है, दूसरी तरफ से नारायण दिखते हैं। इस तरह का चित्र क्या बोलते हैं उसको, होलोग्राम से। तो ये चित्र होते हैं, एक तरह से तो मैं हनुमान जी दिखेंगे, दूसरी तरफ से रामकृष्ण परमहंस दिखेंगे, नेहरू जी दिखेंगे, दूसरी तरफ से महात्मा गांधी दिखते हैं, इस तरह का चित्र होते हैं। उसे कुशलता से देखनी पड़ती है, बाएं तरफ से देखो तो एक चित्र दिखता है, दाहिने तरफ खड़े होकर देखो तो कुछ और दिखता है। तो ये बाहरी तरफ जो दिखता है इससे नहीं परमात्मा का पहचान होगा। इस वैविध्यता के भीतर जो एकता है, एक ही परमात्मा अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग भाव से, अलग अलग शरीर में प्रकट हुआ हुआ है। ये भाव उदय होना हो तो हमें बिजली को देखना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ बल्ब को देखते रहेंगे, रोशनी को देखते रहेंगे, इसके भीतर एक ही बिजली है भाई, वो हमारे नजर से उजल रहेगा। एक स्विच दबाओगे तो 100 बल्ब जलते हैं, 100 बल्ब के भीतर है एक बिजली, वो एक बिजली एक स्विच में है, वो स्विच कहाँ है उसका ये पता लगा। जनक को ये पता लग गया, वाह मैं तो एक एक बल्ब को देख के वही सोचता रहा, ये बल्ब चमक रहा ये बल्ब चमक रहा ये बल्ब चमक रहा, अब मुझे पता चला ये बल्ब को मैंने छोड़ा तो तार के भीतर जो चल रही है बिजली वो कहां से आ रही, वो स्विच मेरे पकड़ने आ गई। हजारों मोबाइल फोन होंगे मगर जो मोबाइल टावर है वो समझ में आ जाए, इस टावर के वजह से ये सब फोन काम कर रहे हैं। जिसने टावर को पकड़ लिया उसने सारे मोबाइल उसके कंट्रोल में आ गए, उसके काबू में आ गया। मान लो किसी को टावर के बारे में, वो मोबाइल टावर के बारे में पता ही नहीं है, वो सिर्फ सोचता रहेगा ये मोबाइल सिर्फ फोन से ये सब काम चल रहा, यही सर्वे सर्वार। मगर जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, टावर के वजह से ये सारे फोन काम कर रहे, तो टावर वहां से उखाड़ो तो सारे के सारे फोन बंद हो जाएंगे। इसका मूल वहां है। जिन्हें कहने मैंने मोबाइल देखना छोड़ दिया टावर के ओर में ना मैंने दृष्टि लगा, अब मुझे पता चल गया कहां से सब कुछ है, वो ये कुशलता से मैंने देख लिया टावर को। मेरी दृष्टि यदि मोबाइल फोन में अटका रहे, इसी को मैं सर्वे सर्वा समझता रहूं तो मेरा ध्यान कभी हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये नहीं कह रहे मोबाइल फोन को तुम फेंक दो, नहीं, दृष्टि यहां से हटाया, इससे हटा करके अपने मन को मूल पर ले गए, किसी कुशलता के साथ परमात्मा विलोचित है।

समुद्र में बहुत से लहर उठते हैं, एक ही पानी का लहर है। लहर समुद्र से जैसा अलग नहीं है,